याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्यनी मोक्षां पन मातावन खान्य मारिय तुमांगे गतहा प्राणय उबिगे श्री कुमारयाट उबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसो मनव මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා ආමෙන්